गुर तार तारन हारिया, देहे भगत पूर्ण अवनासी, हौं तुझको बलिहारिया रहाऊ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिन्नी त्याया, परसत पैर सिजत ते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संयम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेश्वर नानक भेट्यो, साचै शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरतर लाइय एत, तन कर तुलहा लंघ जेत, अंतर पाहे तिसै तू रख, अहनस दीवा बलै अथक। ऐसा दीवा नीर तराए, जित दीवै सब सोजी पाए रहाओ। हसी मिट्टी सोजी होए, ताका किया माने सोए, करनी ते कर चको ढाल, एथे उथे निभही नाल। आपे नदर करे जा सोए, गुरमुख विरला बूझै कोए, तित घट दीवा निश्चल होए, पानी मरे ना बुझाया जाए। ऐसा दीवा नीर तराए, डोले वाओ ना वड्डा होए, जापै ज्यो संघासन लोए। खतरी ब्राह्मण सूद के वैस, निरत ना पाइया गणी सहंस, ऐसा दीवा बाले कोए, नानक सो पारंगत होए। राम कली महला पहला, तुदनो निमन मनन तेरा नाउ, साच भेट बैसन कौ थाउ, सत संतोख होए अरदास, ता सुन सत बहाले पास, नानक बिरथा कोए ना होए, ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ। प्राप्त पोता कर्म पसाऊ, तू देवह मंगत जन चाऊ, भांडै भाउ पवै ते त्याए, तुरतै छोड़ी कीमत पाए। जिन किश किया सो किश करै, अपनी कीमत आपे धरै, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए। लोक तकार कह मंगत जन, मांगत मान ना पाया, सहकियां गल्लां दरकियां बातां, तैं तां कहन कहाया। राम कली महला पहला, सागर मह बूंद, बूंद मह सागर, कमन बुझै बिद जाने, उत पुज चलत आप कर कीने, आपे तत पछाने। ऐसा ज्ञान बिचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर न जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख मह नार नार मह पुरखा, बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मह जोत जोत मह मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला पहला, जा हर प्रभ कृपा तारी, ता हूं मैं विचों मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी बिचारी। सो हर जन हर प्रभ पावै, अहनस भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावै रहाओ। तुन वाजे अनहद घोरा, मन मानिया हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया। सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी, तह तीर्थ वर्त तप सारी, गुर मिलिया हर निस्तारी। जह आप गया पौ भागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागै, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए शब्द तृप्तासै रहाउ।
पंच बैल गडिया देह तारी राम कला निबह पत सारी धर टूटी गाडो सिर भार लकड़ी बिखर जरी मंज भार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बियोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपै निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मह मुंदरा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सतयुग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सतयुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझै को बीचार जुग चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागै सो मुक्त होवै गुर बिन नाम ना पावै कोई रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जानन दूर गुरमुख बूझै सो जी होई अंतर नाम वसै सुख होई द्वापर दूजै दुबदा होई परम पलाने जान है दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रहाए एक पैर चलै माया मोह वधाए माया मोह अत गुबार सतगुर भेटै नाम उधार सब युग मह साचा एको सोई सब मह सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम बखाने कोई सब युग मह नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझै कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वडियाई होई राम कली महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे वड भाग हुवै वड भागी

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाई, राम जन गुरमत राम बुलाई, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाय रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय, हर के लोग राम जन नीके, पागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनि ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है सेवड भागी, हृदय मन

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस से ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

हे बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का कहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

पाछै पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया।

जानन हारी कहो बल जाऊं। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

रहाउ। रथ में वसिया सत का खेड़ा, तृतीय मह किस भया दुतेड़ा, द्वितीया अर्दो अर्ध समाया, एक रहे आता एक दिखाया, एक सूत परोए मणिये, गांठी पिन पिन पिन पिन तनिये, फिरती माला बहु विद पाए, खिंचया सूत ता आई थाए, चहो मह एक मत है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया, यूं किंकुरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै, रहाउ दूजा राम।

महला पंजवा करन करावन सोई आन ना दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै दीठा रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भये निह काम तन मन सी तल अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाओ।

गुर कहो हौ सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ। महिमा जा की गहर गंभीर,

अनक पाप ता के पानी हार जां को मया भई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन वा कै संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान।

भोग आपन कर्म आपे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाउ तन तन कला।

तू आगे बंद छाड वडाणी तात मूड़े यहां बसना रात मूड़े माया के माते ते उठ चलना रात रहे हो तू संग सुपना रहाओ बाल व्यवस्था बार के अंद पर जोबन लागा दुर्गंध तृतीया व्यवस्था सिंचे माई बिरध पया छोड़ चलियो पछताई चरंकाल पाई दुर्लभ दे नाम बिहूनी होई खे पशु परेत मुगद ते बुरी तिसे ना बूझे जिन ए श्री सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुम्हें छडाव हो छुटकह बंद बख्श मलाव हो नानक जागे अंद राम कली महला पंजवा कर संयोग बनाई काश किस संग रहे हो याना राच प्रित पार नित सार संभार अंत की बार ऊठ सदार नाम बिना सब झूठ प्राणी गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ प्राणी रहाओ तीरथ नाए ना उतरस मैल कर्म धर्म सब हों मैं फैल लोक पचार गत नहीं होए नाम विहूणे चल सहरोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपै जिस आप जपाए सगल फला से सूख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्ते, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ता छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हुए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संतोख।

जस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रहाउ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे।

खंड खंड जो मांगे सो भूखार है, इस संग राचे सो कछु ना लह। इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ।

काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत पर

गुण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

खोज हो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो हो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाले संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये ना उतरे मैल, हम मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ता का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो ना बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम कली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू सम्राट पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा,

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाऊ कीर्तन निर्मोल गहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हत राखी पूंजी सुन संवाद गुफा तह आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

नहीं जानै भेद अवतार न जानै अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जानै सुन सुन अवर बखानै रहाउ संकरा नहीं जानै भेव खोज तहारी देव देवियां नहीं जानै मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरै आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

निदान, नानक पाया एहो निदान, हरे हर निर्मल नाम, जो जपै तिसकी गत होए, नानक कर्म प्राप्त होए, राम कली महला पंजवां, दलाब दे सवार, जाहे ना दरगाह हार, हलत पलत तुद होए वडियाई, अंत की बेला लए छुडाई, राम के गुण गाओ, हलत पलत होए दोहें सुहेले, अचरज पुरख त्याओ रहाओ, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब हो वह मीत, निर्मल तेरा हो वह चीत, सब ते उत्तम एहो कर्म, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर सिमरन तेरा होए उदार, जन्म जन्म का उतरै पार, पूरन तेरी होवे आस, जम की कटिया तेरी पास, गुर का उपदेश सुनीजै।

जिसका सब कोए किसह अराध सदा सुख होए काहे ब्रह्म ब्रह्म है बेगानी नाम बिना किस काम ना आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ जो जो करे सोई मान ले हो बिन माने रल हो वह छे किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोहो साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवां, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहण ना जाई, साचे सच अला

ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रहया सर्ब ठाई रहाऊ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिदमाहे अरादो।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगट

सिंध समायो कट के माही, करनहार को किस अचरज नाही, जो छूटो तो जाए पयाल, जो काडे हो तो नदर निहाल, पाप पुन हमरे बस नाही, रसक रसक नानक गुण गाए, राम कली महला पंजवां।

किंत जाल काल चक्र पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावह साच तना रहाउ ऊणे काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे विकार जियरे कैताई गाफल संग न तसु आ जाई तरत तो हो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाक सिर छाने जिन दिया तिसै न चेतै मूल मिथ्या लोभ न उतरै सूल पार ब्रह्म जब भये दयाल इह मन होआ सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै।

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचे दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरहु पार। राम कली महला पंजवां, ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन में किरत पया पूर्व कमाणी छोड़ह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण न बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दुखन देह बनासी महा खया जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत हुए निहाल जाकी तूर

बिन से अभमान, एक त्याई साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव रहया गुणतास, दर्श दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितव सच अरदास, राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, गावु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाईए, आवागौण मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मैं होए निवास, संत संगत मैं होए उदार, नानक भवजन उतरस पार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरातो साचा सोए, जा की सरन सदा सुख होए।

बिरख श्यामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै फुन बैकुंठ सदावै अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद।

जुगत अब कीजै, जाते दुर्मत सगल बनासै, राम भगत मन पीजै रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है, बूझै नह।

निस्बा सुर मह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिटै नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घटै निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो बिखिन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझै कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जाकै सिमरै निमख ना ता कौ गायो माया को मद कहां करत है संग ना काहू जाई नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हुए परवाना करै तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा।

लखन ए जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

वापेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखराण पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुखदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए तिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटे खापर पीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न राख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़।

कैसे उतरस पारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना। त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा। उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग। जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रिभवन मीत। राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी। सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना। गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ। गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाऊ। माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए। नाम रतन निर्मूल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा। हऊ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै। जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई। अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी। पर कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय। गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परोता। जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी। सुन समाद सहज मन राता, तज हौ लोबा एको जाता।

सीजै, वर्त तपन कर मन नहीं पीजै, राम नाम सर अवर ना पूजै, गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जै त्रै गुण भिख्या जन्म मरी जै राम नाम बिन दुख सही जै चारस पवन संघासन पी जै न्योली कर्म खट कर्म करी जै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै किरत पया दोष का कौ दीजै अन ना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै मनमुख जन्म जन्म मरीजै सतगुर पूछ संग

भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यों हेत वधाई हे, की नाम विसार है भरम गया रहाउ, जत सत संयम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया, पुन दान इशनान ना संयम, साध संगत बिन बाद जया, लालच लागै नाम बसारियो, आवत जावत जन्म गया, जां जम ताई केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यो, मोह पाप मह गलत गया, हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया।

महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया, सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अवमान पया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसह मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन ज्योत दि

काट काट क्यों गरीबाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई, राम कली महला पहला, आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया, तरन गगन कल तारी, गुरमुख के ती शब्द उधारी, संत हो रहाओ, ममता मार हूं मैं सुख है, तेरे पवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मन मह राख है, सतगुर शब्द विचारी, सिंही सुरत अनाह दवाजे, कट कट जोत तुम्हारी, परपंच बेन तही मन राखिया, ब्रह्म अग्न पर जारी, पांच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी, राव सस लोके इहो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी, शिव नगरी मह आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इहो मन राजा, पंच वसह विचारी, शब्द रवै आसन घर राजा, अदल करे गुणकारी, काल बकाल कहे कह बपरी,

जोग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किश बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, ता एह सोझी पाए। एहो जोग न होवै जोगी, जे कटंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहै। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रूग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बूझै, जोग जुगत सो पाए। जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचों भरम चुकाए, बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भव जल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को

अहंकारी जिच्चर अंतर सास तिच्चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

त्रिट अपाए सिर सिर तंदह लाई तिसह सरेवो तां सुख पावहु सतगुर मेल मलाई अपना आप आप उपाय लख न लखना जाई आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे पर

हाथ पोतहारी जिन दिए तुद बनता अर मीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन पूजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना देखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन।

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम भउ खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल।

हर प्रेम भगत बने आई संतो हो, सतगुरु खेप निबाही संतो हो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो हो, रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया।

आनंद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

विचारिया। एक भरम भूले फिर दह दिस, एक नाम लाग सुवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

शब्द सहावा शब्दो सहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिरह कनेरे करह गल्ला गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

न है। कित संयम धोता जाय मन तो वोहो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इहो सहसा इव जाय जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन्नी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो हो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुरु

दाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिभ लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जा तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचो आप जाई।

मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा कटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे।

प्यास न जाय, प्यास न जाय हूत कितै, जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिलै जिसे आई, कह नानक होर अनरस सब विसरे, जां हर वसै मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

अंग कर्मक माया, हे कर्मक माया तुध शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रस नहा रस समाणी सच अलख वडाणी तां की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचा सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निद तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहिला साचा कर गावहु गावहु ता सोहिला कर साचा जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद पावे गुरमुख जिना बजावे इहो सच सबना का खसम है।

भए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावई।

ओ पुत भाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंदप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा,

अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बीचारा कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणी, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणू, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणू। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए, कहो नानक घर प्रभ मेरे कै, नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवां, हर हर त्याए मना, खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा, कंठ उरतारी है, उरतार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईस गोपाल माधो, गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु, दिन सरैन चितारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक भंडार, नाम अनंत धरा, नाम नरहर निधान जिनकै, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याएणा।

नाम कुनह चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझ त्याव है पुरख पत परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक किरिया लग चरण कमल है साधी है भाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सूख कनेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत ना पाइय गुनिए राम दयाल दुख हर सरण दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे भवजल रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया राम कली महला पंजवा संत सलोक चरण कमल सरनागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारन राम संत प्रभ विपत निवारनो तिस बिन अवरना कोई जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनहो ना विसरै गुर चरण लागे दिन सा भागे सर्व गुण जगदीसरै कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको
किसह स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो सदा सदा पल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो। श्लोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान संत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल तां कै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै जन्म मरण बेकार छूते फिर ना लागै दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ शंत सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो अंद भया वडभागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्यावो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा रुती श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन पै हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुती महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद भावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निचल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया भई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरण तेरी मिति जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जाका वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुथिया
जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। श्लोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरे आ मकरंद जियो प्रभ पूर रहे आ सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह सिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंद।

अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रह न कोई किस पह करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव पतमती लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संकट टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा।

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहुना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जाले मलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सो ताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावे सुख सहज निवास। गया न आवे आए न जाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थर चीत समाध सुगोनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ करे मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले। गुरमुख तोल तलावे तोले, गुरमुख आवे जाए न संग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावे पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चित है एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यों घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

गुर का कहया अंक समावे, निर्मल सूचे साचो पावे, गुर सागर रत्नी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमावहु, गुर की करनी काहे तावहु, नानक गुरमत साच समावहु, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहां दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवे टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपहु नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय पावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी, तिखा नवारे सोई, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तह ते तह पई, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊ, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊ, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारे जाऊ, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस संभला, ता तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

कंद ग्रंत विण नावै क्यों छूटिए जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुरबिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वजोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

काल मन जंजाली वेड़िया भी जंजाला माही बिन लावे क्यों छूटी है पापे पचह पचाही फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यों मछली फाथी जम जाल विण गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रह लिवलाए इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराय बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाय बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बाले ने जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते बिरलो ज्ञानी बूझनो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तै दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन खड़िए कर कर भजे ताहे उसारे उसरे ताहे सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है परम भलाने भये देवाने विण भागा क्या पाइय गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचै तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइए पब्बे भल है गुरमुख बूझै ता निज कर वासा पाइए पब्बे भौजन मार्ग।

हार मोए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुम्मण माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मोए विणनावे दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे नाम।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजह गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो अथ बेकार जंत अपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो हो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारू, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे तां सब किश सूजै अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजै साच सुमावे साचे सूचे एक मया झूठे आवह ठवर ना पावे दूजे आवागौन भया आवागौन मिटै गुर शब्दी आपे परखै।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावै, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावै, गुरमुख निर्मल हर गुण गावै, गुरमुख पवित्र परम पद पावै।

शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हम मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी तिसमें है उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यो घर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरिय सच सुधि गुरमुख सारे अपसर विद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाने गुरमुख तारी पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते हो मैं जाई नाम रते सच रही समाई नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावे मूख द्वार नाम रते त्रे पवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नावे बोले सब वेकार नानक नाम रते तिन को जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाय जोग जुगत सच रह समाए बारह मह जोगी परमाए सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवे सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया पुर धार गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाई गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई बिन

अकेला कथ कथाले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवे का घर मंदर अग्न पिराहन कमन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस को जान समावे कमन त्यान मन मन समावे हों हों मैं विचो खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मनमुख गावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अग्न मरे सतगुर कै पाने सच पै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसे सच अंतर हीया तन मन सीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेखे अग्न निवारी नानक नदरी नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवै घर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहै कवन बुद्ध गुरमुख पात रहै कवन जोध जो काल संघारै बोलै बाणी नानक बीचारै शब्द भाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारन हारा गुर पर चै मन सा

अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रति से कैसी, जिस ते उपजे तिस ही जैसी, कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि, नानक गुरमुख मन समझाहि, नौ सरस भार दसवै पूरी, तह अनहत सुन बजावह तूरी, साचे राचे देख हजूरे, घट घट साच रहिया भरपूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज भाए मिलिए सुख होवै, गुरमुख जागै नींद ना सोवै, सुन शब्द अपरंपर तारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते, कबुद्ध चुआवै सो के तठाए, क्यों तत न बूझै चोटा खाए, जम दरबादी कोई न राखै, बिन शब्द नाही पत साखै, क्यों कर बूझै पावै पार, नानक मन मुख ना बूझै गवार, कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार, सतगुर भेटै मुख द्वार, तत ना चीनै मन मुख जल जाए, दुर्मत विछड़ चोटा खाए, मन हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान, साच वखर धन पल्ले होए, आप तरे तारे पी सोए, सहज रत्ता बूझे पत होए, ताकी कीमत करे ना कोई, जह देखा तह रहया सुमाई, नानक पार परे सच पाई, सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिया भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कही है, इस कहो कवन अधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर लख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपनी मन समझाई, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नगरी मेल मलाई, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाई, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकाल कला धर सोई, नदर करे शब्द घट मह वसै, विचों भरम गवाई, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाई, शब्द गुरु भव सागर तरियै, इत उत एको जानै, जेहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै, त्रै सत अंगुल वाई औदू, सुन सच आहारु, गुरमुख बोलै तत बिरोलै, चीनै अलख अपारु, त्रै गुण मेटै शब्द वसाई, ता मन चूकै अहंकारू,

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सपाखै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

आपे सब रंग माणै, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर है फरमाणै, मांग है नाम पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन कौ कुरबाणै, अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई, नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर नाम।

है सहसा गया बलाय, ना किस बीजे ना उगवे, जो बख्शे सो खाय, अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय, नानक गुरमुख।

होई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होय। कहया शब्द ना मानी हौ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हौ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होय। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारु भाउ लाए। अन दिन गुण गावे सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाई जा कौ नदर करे पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा। सब किस तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावे तिस बख्श लै सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावे। माया नू फिरे तपा सदावे परमे भूला सब तीर्थ गह। ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मूखंतर पावे। महला तीजा सो तपा जे एहो तप काले सतगुर नो मिले शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन। गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई। सलोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम तिस दै दित्तै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन। पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआए। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार।

नानक सच्चा एक है, दोहो विच है संसार, चंगे मंदे आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे शांत ना आवी, दूजी नाही जाए

पाई तिन जम्मण मरण ना चुकई हौ मैं विच दुख पाई जिन्नी सतगुर स्यों चित लाया सो खाली कोई नाही तिन जम की तलब ना होवे ना होए दुख सहाय नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म है जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार होए अपने सवाए आए बह गल्ला करह ओना मारे जम जंदार अगे दरगाह लेखा मंगी है मार खुआर की चह कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरै कोई कड्डो एहो विचार सतगुर मिले ता नाम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादे तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सच्यार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जे वरदाता नाही किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन वात सपीती नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुरु दीखिया घर देवन जाहे स्त्री पुरखै खटिया।

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियाने, होर पकड़ हिंदू मुसलमान, सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवे, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टण में है भीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेखना रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेखना रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना।

आई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता, मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना जा।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना, गुरमुख हो सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे उस पिछे डुब दे पी तरना, नानक ज्योत पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे आ सब आपै। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापै, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रो आया, परशुराम रोवे घर आया, अजय सो रोवे भीख्या खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवे दह सिर लंक गवाए जिन सीता आंदी दौरू वाए। रोवे है पांडव भये मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर, रोवे जनमेजा खोए गया एकी कारण पापी भया। रोवे है सेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे है राजे कन पड़ाए कर कर मांग है भीख्या जाए। रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखे लाए महला दूजा, जप तप सब किश मन्ने है अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी है बुझिए गुर प्रसाद, पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि सुमाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना परखन जा।

तेरी गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहां रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुली जै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जै तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जै।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर बरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक।

हक जाय, नानक दर दीदार समाय। महला पहला कमर कतारा बंकुड़ा, बंके का असवार। गर्भ न की जय नानका, मत सिर आवे भार पौड़ी। सो सत संगत शब्द मिले, जो गुरमुख चले सच ध्यान से सच्चे। जिन हर खर्च धन पल्ले, भगत सोहन गुण गाम दे। गुरमत अचल रतन विचार मन वस्या, गुर कै शब्द भले आपे मेल मलाएदा। आपे दे वड्याई, सलोक महला तीजा। आसा अंदर सब को कोए नरासा हुए, नानक जो मर जीव्या सहला आया सुए। महला तीजा, ना किस आसा हथ है क्यों निराशा हुए। क्या करे एह बपड़ी, जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार, सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दा तार। निचल एहो धन, सास सास अराधे निर्मल सोए जन। अंतर जामी अगम रसना एक पन, रव रहे आसरबत नानक बल जाई। सलोक महला पहला, सरवर हंस तुरे ही मेला। खसमै वै पाणा सरवर अंदर ही रा मोती। सो हंसा का खाना बगला काग ना रही सरवर।

ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवां भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारजे आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजन तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै श्लोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै

जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

पूर्व लिखिया इन रंग लगा निरंकार उन्नी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवे मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगे दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवह चेता तिसनु सदा सुख जिस तू आवह चेता तिस जम नाही दुख जिस तू आवह चित तिसके काड़िया जिसदा करता मित्र सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित सो परवान जन जिस तू आवह चित बहुता तिस धन जिस तू आवह चित सो वड परवारिया जिस तू आवह चित तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवां अंदरों अन्ना बारहों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वै चक्र बनाई माया नू बहुतावे।

सत्तर सत्तर समाने औगण कटे करे शुद्ध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत

कर पिरहड़ी दूजी नाहीं जाए। इको दाता मंगी है सब किछ पल्ले पाए। मन तन सास ग्रास प्रभ इको एक ते आए। अमृत नाम निदान सच गुरमुख पाया जाए। वड भागी ते संत जन जिन मन बुठायाए। जल थल महियल रब रहया दूजा कोई नाहीं। नाम ते आई नाम उच्चरा नान।

सब सैनो कृपाल संभाली साहे साहे बिरथा कोई न जाय जे आवे तुद आहे। सलोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आ

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उधरस नाई पौड़ी ना तू आवे वस बहुत कणावणे ना तू आवे वस बेद पढ़ावणे ना तू आवे वस

योग हरख आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे

जिस भगती लाए नानक विरले हे पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने दिन सरहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौं तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है हबे भस पणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारणो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानण।

ना कोई। जाचक सदा जाचो है महला पंजवा, देह सजंदड़ी ऊण मचूना। गुर सज्जन जियो तराया, हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता। जिता जग सवाया पौड़ी, वड्डा तेरा दरबार। सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह, निश्चल चौर छत। जो भावे पार ब्रह्म सोई सच न्याऊ, जे भावे पार ब्रह्म

जो नर पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सवनड़ी दे बिरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देहे सो पाई जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आई अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाई साध संगत कै आसरै प्रभ सिउ रंग लाई औगण कट मुख उजला हर नाम तराई जन्म मरण भौ कट्यों फिर जोन ना पाई अंधकूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाई नानक बख्श मलायन रखे गल लाई सलोक महला पंजवा महबत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवा अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रव्या हब थाई वन त्रिण त्रे भवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या।

जुगत साई सहकाया फेर पलटी है चुलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरटी है दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाइन सटी है जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन थटी है।

दलाली सतगुरे आखै सच्चा करी सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदहा रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब

में लो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेओ रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औधू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

आई। जैसा मगहर तैसी कांसी, हम एक कर जानी। हम निर्धन ज्यों इहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदिया ले चक्र पुंगा पेटिया ले रायन संगा चूकिया ले मोह मयासा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुल नीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया।

भरम यले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवितना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो।

दोए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाऊगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख बस।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भदान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे।

जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदार नहाइए, गोमती सहस गौदान कीजै, कोट जो तीर्थ करै, तन जो हिवाले।

होए कैसे, जो पार सह ना परसै, देव संसै गांठ ना छूटै, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबह ना नासी, कौरव दास सबह नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है अराध है, सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में है, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो नाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेलो हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखी, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा, गुण

बालक स्वामी हमरा खुह वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरेओ प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारेओ प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपयो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांच है हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद ध्यावे। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना

वीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई।

अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजेओ माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना।

आठ पहर गुण गायन रहाऊ साधु धूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुइ कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

दीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

कीता, बिन सह दुख विपरीता, सब अर्पो मन तन चीत रहाव, कोई विरला आपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर भज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होहि पनीत, नानक दास बल बल कीत, नाटष्टपदियां महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम मेरे मन तन नाम आधारी, खिन पल रह ना सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम संभारी रहाव, हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारी, दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सुवारी, मधुसूदन जग जीवन माधु, मेरे ठाकुर अगम अपारी, एक बिनो बेनती करो गुर आगे, मैं साधु चरण पखारी, सहस नेतर नेतर है प्रभ कौ,

हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक सम्हारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिय संक उतारी सतगुर मिलिय परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींचै।

हर अमृत सर नावहारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

बिचारी सत संगत मिलै ता दृढ़ता आवै हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदर आग लगानी कड कूप कड्डै पनेहारी साकत स्यो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसीय तज साकत परै परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

सब वर्तै, कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी, हर हर लाज निवारी। रहाऊ कर कृपा जाचक जन तेरे, एक मांगो दान प्यारी। सतगुर की नित श्रद्धा लागी, मोह को हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यो मथी, नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया, कड माखन के गटकारे। नित नित काया मज्जन किया, नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए, सब फोकट चार सिंगारे। मटक मटक चल सखी सहेली, मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई, मैं सतगुर अलख नखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी, सब एको पुरख मरारे। संत जना की रेन मन पाई, मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया, हृदय अंतर हर जन पारे। श्रद्धा श्रद्धा अपाए मलाई, मोको हर गुर गुर निस्तारे। पवन सूत सब नीका करिया, सतगुर शब्द विचारे। निज कर जाए अमृत रस पिया, बिन नैना जगत निहारे। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साक।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले है पर उपकारी संतै संत मिले मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं

साधु अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाऊ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वत्सल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाइय बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो।

कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो ब्रह्म पौ भागा रहा पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन भये शांत आई हर उर धार्यो वड भागा मनमुख रंग कसुंभ है कचुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिनमह बिन सजाए परतापै दंड धर्म राई का लागा सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी ज्यो रंग मजीत बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग नाल है सुभागा हर चारे

माली घोड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला मेरा मन तन लीन भया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाउ गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जप माला जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट हर हर उरतार्यो गुर पूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुर पूरै गुर बचन बिकानो हट हाट मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावै बहु कंचन दीजै कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर परम पौ भागा लजपानी मटकी माट कलयुग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक

अवर कहना झूठियां नित करे जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वो साध के ताज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर जा कै सिमरन कुल है उधर।

आधार चरण संतन के मेरे हृदय मझार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किस कान सब किस करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हत्थी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहे लेख पई ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिया तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर होवै।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच है एक

पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठ सठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

मेरा नाउ सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई।

दूजा अवर ना जाने कोई तौ दीवाना जानिए जा एक आकार कमाई हुक्म पछाणे खसम का।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक।

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

पुनवासी गुरबचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी राग मारू महला पहला घर पंजवा।

पुनः बख्शाए जियो। अब तू मार्ग पाए हर की चरनी लाग रहा, विचो हो आप गुआई। मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याई।

आनंद त्याय हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू अन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुखे को जानिए जा सतगुर

सब तिनके दुख पर हरे। बेसवारवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हरि अंगीकार करे। सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरल परे उदरे। जन नानक हर कृपा तारी उर धरयो नाम हरे। मारु महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिवलाई। साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जप्यो ते पाई।

गण गंधर बेज पियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस ते आयो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

कथा सुनाई प्रभु गुरमत हर हृदय सुमानी जप हर हर कथा बड़ भागिया हर उत्तम पद निर्वाणी।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाउ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाईए कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक सरनागती कर कृपा नाम सुमानी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु कुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

लाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जीओ। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख काटे हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चल दया नाल सखाई जीओ। जिसनो कृपा करे सो त्यावे, नित हर जप जापै जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस आवे, जप हर हर पावे।

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी।

सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ। देह धार अर देवा दर्पह, सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी ही मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह, केते रूप उपाया। छल बपरी ये कौला डरपै, अत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक। हर सिमरत अमरे अटारी, पुत्र हेत नारायण कहियो। जम कंकर मार बदारी, मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो सरद द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरियो, वदक तरे बेचारी। एक निमख मन माहे अरादेव, गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हरनाखस नखह बेदारी। विदर दासी सुत भयो पनीता।

नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति अनक।

ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए खिन पीतर महिमा कथन न जाय। निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नान

टिकाव सरी जिसका जास सुनत भव तरी ता स्यो रंग न लाव सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव।

ब्राह्मण भ्रम छूटा ज्यो प्रभ भये सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पी।

जन्म बावर दलभ जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह एनथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेव है हौ हौ करत बेहावत फोकट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल फलानत खत

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदे निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ।

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुले

डा परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो

दिसताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीरथ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहु बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहमे मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक मह पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई पीटे संत जित हर हरे हर त्याइए मोको कोई ना जानत कहियत दास तुम्हारा एहा ऊट आधारा रहा सर्व तारन प्रित।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला।

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निचल तिन काठाना गुरते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एहे निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर।

भज संग साधु भव सागर उतर है पार। मेरे मन नाम हृदय धार, कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ, अवर सगल विसार रहाउ। जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु ना।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करण कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उचारण।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

अठसठ तीर्थ बहु कणा भ्रम था के भिखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए लै पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

दिया समुंद मजार कंदी देसना आवै ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे।

मारू महला पहला शब्द मरै ता मार मर भागो किस पह जाऊं जिस कै डर पै भागी है।

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै।

सुख नहीं, गाडे लादे शार, विछड़िया मेला नहीं, दुख कणो जम द्वार, अगे क्या जाना नाही, मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे,

लाले गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लाले खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

सुवाया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां कृपा करे तां सेवीऐ सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए वंदन तूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए।

खार समुंदर टंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

थी पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ ना लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत सो।

कर हीरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटै दुर्मत कुमन कीरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उदर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम फलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी।

आक बेपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे तेशो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है ना।

अभमाना मनुआ डोले दहें दिस तावे बिन रात आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कीर्तना मिटही हुक्म ना बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चेतन।

गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी

उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्ध लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द

सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो एक भ्रम भूले फिरे अहंकारी

तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुंडे तू हो छ रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रतन जवे हर बन जन आयो कानर लाद चलायो जे घर मैं तुद रहना बसना सो घर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उरजायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम

सागर जिन्हें उपायु शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिनसह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी मन

कामान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवन सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत किरपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखे संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आघावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विद वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुट है हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जो नी फिरना जो वरताए सोई पल मान है बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लाव है तित तित लगना।

देखो सब जनते इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, हस्त अधोत भया उठ चले, ज्यो ज्यो औध बिहानिया, पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दोजक पाए सिर जनहारे, लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई भैया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वंजेसा, करन करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लभ पया खाते अंदर अगले

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस

साहिब सबना सिर भाए मिले भव जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

गगन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईऐ साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे मां की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत

जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर आ।

चारी खेल तमाशा तुंदू कारी बाजी खेल गए बाजीगर ज्यो निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे भवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हम मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जीए क्यों सुख पावे दुए तीए निर्मल एक निरंजन दाता गुरपूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहया मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल ना काई है जीवर सायन साचे राती हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मलाई है रख रख पैर तरे पहो तरना जत कत देखो तेरी सरना दुख सुख देह तू है मन भावे।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई रीतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाने मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्दी होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरन।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवें चलावह, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगता का गुणकारी करता बख्श लय वड्याई है देंदे तोहट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूझ साच नारी जह दूजे परम पलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

सुरत समाई है कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बिसरे दुख पाई है भोजन साच में।

तन तन अर्प मिलै जग जीवन हर सिउं बणत बनाई प्रभ की गत मिट कोई ना पावै जे को वड्डा कहाए वडाई खावै साके साहेब तोट ना दाती।

पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई है। बूझो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिय पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज्ज है।

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही बैस है तखत।

0: जुग शक्ति ही तिन्हें वरताई,
1: ज्यो तिस पाणा तिवें चलाई,
0: तिसह शरीक ना दिसै कोई, आपे अपर अपारा ही, गुप्ते बूझो हो जुग चतवारी, घट घट वरतै उधर मझारी, जुग जुग एका।

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंजे पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवारा ही गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की चैत सो पाई है सतगुर बाज हो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही।

खर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समंदर सी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहि मरह मर जाहि। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह अग

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

गहारा ही सतगुरु मिले त मनुआ टेके राम नाम बेसरन परेके हर तन नाम अमोलक देवे हर जस दरगाह प्यारा ही राम नाम साधु सरनाई सतगुर बचनी गात मित पाई नानक हर जाप।

राम जपहु अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत् मिलकाया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराई सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे हो पार अफारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई।

नेड़ ना आवे मन सो प्रभे अपरे अपाराही गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकाराही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करहो जन पाई अकथ कथो मन मनह समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हाराही हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराल्ला, कोई गुरमुख बूझे शब्द नराल्ला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

सूझै आज काल पच जाता ही सतगुर बाज ना बेली कोई ऐथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवै कर कृपा यूं सनलै सनल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग।

कहो क्यों लखिया जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सबाई।

अंत ना जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाही संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताही दुख मह जन्मे दुख मह मरना दुख ना मिटे बिन गुर की सरना दुखी उपजे दुखी बिन सह क्या ले आया क्या ले जाही सच्ची करनी गुर की सिरकारा आवन जान नहीं जम तारा दाल छोड़ तत मूल परा।

राम नाम कटयंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफत सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पैंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े वडेरे नानक साच मिले पत राखो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाय अंदर।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाएंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवन लै फेरी चंद सूरज द्वे दीपक राखी सस कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावह।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किछ करे सो अपन पाने। लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा। जो तिस पावे सो निहचो होवे। मनमुख आप गणाए रोवे। नाम

कोई, गुर बिन सो जी किन ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी। ओप

जति सती बनवासी ना ताद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाएंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना

पूरे शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुरते सूझी हुई, नानक साच रते।

हुक्म समाया हुक्मे दीसै जगते उपाया हुक्मे सुर्ग मछ पै आला हुक्मे कला रहा हुक्मे धरती तौल सिर पारन हुक्मे पौन पानी गहनारन हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाएंदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदा फुन।

दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथा मुक्त कराईंदा। सुनो उपजे दास अवतारा, शिष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाईंदा। गुरमुख समझे रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाईंदा। पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्त कलीखे, पाप पुन भी जाएंदा। उत्तम सतगुर पुरख निराली, शब्द रत्ते हर रस मतवाली, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरा भाग मलाएंदा। इस मन माया को नेहो कनेरा,

निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार मरालम प्रभ आपे वाहे।

जन राया दुख भय भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाण आपे जाने आप पछाण सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी

उन निरंजन गाया हो मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हो मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के पाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यगन निवार

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जान हो गुरमुख बूजो हो शब्द पछाण हो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

तारे सस कर सूर दीपक गहनारे देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा भउ जाए अनुभव पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ पंजन पाइए बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरिए पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइए शब्द सुरत बिन आइए जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरे वो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाह, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर लाभहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै, आसा माहि निरास रही जै, संसार दुख बनासन सेवहु, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे पावे तिस वडियाई, कौन सो दूजा तिस समझाई, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो होमै, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हरसो, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा लिब लागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुर ते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

ना किशु ना सूजै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुरु आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख धारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए

सो सब को जासी दूजे भाए बादा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजे अज्ञानी अंध कमाई है मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई है धंधे धावत मन भया मनूरा फिर हुए कंचन भेटे गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

मेहरवान मधसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई से वडभागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई हे गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता।

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी।

ऐपा गुरमुख पूजै चीनै शब्द अबनासी काम क्रोध भरे हमे अपराधी क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा साधी डुब

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज व्यापारा।

आई मन मुखियन दे किशु ना सूजै गुरमत नाम परगासी मन मुख मैं माया सूते अपना घर ना संभाल है अंत बगूते पर निंदा करह बहु चिंता जल दुखे दुख नवासी आपे करत कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल।

एहो मन पीजै ही। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

का सुख पाया, ना ही साक्या अमृत पी जाय ही, तिल बिख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, संकच आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पी जाय ही, माया अग्न जलै संसारी, गुरमुख निवारै शब्द विचारी, अंतर शांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम लीजै ही, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भउ पावे है, जम ना छोड़ै बहु कर्म कमावे है, सतगुर भेटै ता मुक्त पाईऐ, हर हर रसना पीजै ही, मनमुख अंतर भगत ना होई, गुरमुख भगत

वेद बाद सब आख वखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दिरड़ाया, गुरमुख अमृत पीजै हे। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै हे। मारू महला तीजा, सच्चै सच्चा तख्त रचाया। निज कर वस्या तिथै मोह ना माया, सद ही साच वस्या घट।

तोल, ज्यो भावै त्यों राखै रहना, गुरमुखै को जाताई, जातुद पाणा था सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई, गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाताई, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत शब्द खोई, एक समह प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राता ही, काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द न बुझै आना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाई जग जीवन दाता ही, कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जियो राखै उर तारी,

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सहलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा,

तीजा आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरना आपे गुपत वरतै सब अंतर गुर कै शब्द पछाता ही हर के भगत परे भंडारा।

रतने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब सरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाताई जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एको जाताई माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सुबाया जो तुद पाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर के शब्दे तोल तलाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत विस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझ, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करी कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई।

सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सोह तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा।

अपारा, मनमुख हुक्म न जाने सारा। हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई, हुक्मे वे परवाहाई। गुर प्रसादी हुक्म पछाणे, तावत राखे इकत करयाणे। नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहाई। सब जग में वरतै इको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। शब्द सलाह है से जन निर्मल, निज करवासा ताहाई। सदा भगत तेरी सरनाई, अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई। ज्यों तुद भाव है त्यों त्यों राख है, गुरमुख नाम त्याहाई। सदा सदा तेरे गुण गावा, सच्चे साहिब तेरे मन पावा। नानक साच कह बेनंती, सच देव हो सच समाहाई। मारू महला तीजा, सतगुर सेवन से वडभागी। अन दिन साच नाम लिवलागी, सदा सुखदाता रव्या घट अंतर। शब्द सच्चै ओ माहाई, नदर करे ता गुरु मलाई। हर का नाम मन वसाई, हर मन वसिया सदा सुखदाता। शब्दे मन ओ माहाई, कृपा करे ता मेल मलाई।

सेवे घोर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी, सो सच शब्दे लाहाई। दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा भाव आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते, मनमुख का क्या विसाहाई। से मनमुख जो शब्द ना पछाण है, गुर के पै की सार ना जान है। पै बिन क्यों निर्भो सच पाई है।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो निवलाई, हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक जन नाम

अगम य पारा तिसदा अंत न पाइए पारा वारा गुर प्रसाद रव्या घट अंतर तित घट माते अगाहाई सब मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन देंदा रिजक संबाहाई पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत पाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर चाह पात चाहाई सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

जे कर्म कमाए गुर कृपा ते घट अंतर वस्या शब्दे सच सलाही से जन मिले तुरे आप मलाई साची बाणी शब्द सुहाई नानक जन गुण गावे नित साची गुण गावे गुणी समाहाई मारू महला तीजा निचले एक सदा सच सोई पूरे गुरते सोजी होई हर रस पीने सदा त्याइन गुरमत सील सनाहाई अंदर रंग सदा सचियारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा नौ निद नाम वसया घट अंतर छोड़िया माया काला हाई रैयत राजे दुरमत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक त्याइन सदा सुख पाइन निश्चल राजत नाहाई आवन जाना रखे ना कोई जम्मन मरण तिसै ते होई गुरमुख साचा

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द है कारज के हाही खिन मह हसै खिन मह रोवै।

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर सिंह सद ही रह समाए, गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हम मैं रोग न ताहाय, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माहि समाहाय, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर धावे है, मन मुख अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू,

ए बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हो मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाए जा तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हठ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाई, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे, गुरमुख

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाने नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा मारू महला तीजा आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता।

पाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेख करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजीगर इक बाजी पाई पूरे गुरते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे स्यों चित लाएंदा बाजह बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह इक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चो होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाई है, बिन नावह दुख पाईंदा, आप करे न आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई, गुर

आई। गुर कै भाणै चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप अपाए खपाए सोई। गुरमुख होवै सो सदा सलाही, मिल साचे सुख पाएंदा। नेक जतन करे इंद्री वासना होई, काम क्रोध जलै सब कोई।

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जियो दाता अगम अथाह ओस किल न तमाए वे परवाह तिसनो अपन ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो

सतगुर सेवय सहज आनंदा फिर आए बुट्ठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिया है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवड भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच कमावे सद ही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चे का

लेवै ज्यो तिन कहानी पीड़ा एंदा पूरा भाग गुर सेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवै महल सच्चै सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए।

रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चे सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी ना मोहला पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याईंदा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाई पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे।

पूजै, गुर कृपा ते मन तन पीजै, रसना नाम त्याए रस पीजै, रस ही ते रस पाएंदा, महलै अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मलाएंदा, नाम वसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएंदा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा सुख पाया, निज

हर दिन हर सेवे हो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसिया।

दूजे पाए परम पलाया, हरना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाई, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाई, मन मुख भूले मोए बिल लाई, जिन को नदर होवे गुर

गुरमुख वणज सदा सुख पाई, सहजी सहज मलाएंदा। सच्चा महल सच्चे भंडारा, आपे देवै देवनहारा, गुरमुख साला।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा भाव चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्द आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

पूरै कर्म त्याया जत सत संजम जे सच कमावै एह मन निर्मल जे हर गुण गावै इस बिख मह अमृत प्राप्त होवै हर जियो मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझै हर गुण गावै अंदर सूझै हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरै कनेरी मर मर जम्मै चुकै ना फेरी बिख का राता बिख कमावै सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हम मैं किने ना मारी जीवत मरै ता मुक्त पाई सच्चै ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई।

भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सिहो चित लाया हम मैं विच सद जले शरीरा कर्म होवै भेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाई सतगुर ते सुख पाया।

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई है। बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गा।

आई है। अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करता तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरणी चित लाई है। जिस भावै

मन रखन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एहे वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी कर्म मिले सुख पाई हे गुरमुख नाम प्रगटी है सोए चहो।

सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा करा हर जीव, सतगुर की सेवा लाई। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई। जिनको आद मिली वड्याई, सतगुर मन वसया लिवलाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अबनासी। सर्वे रव रहया तटवासी, तिस बिन अवर ना कोई दाता। हर तिसै

समाही सूके ते फुल हरिया कीतन हर त्यावो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगै जन कर बेनंती जो सर्व सुख

दान तुझे पै करती हर अन दिन नाम बखानी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे।

साध परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणीए। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संबाही, करन कारण समरथ अपाही, थिन मह थाप यो थापन हारा, सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ मह जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारन, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंधक पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साध संगत निश्चो है तरना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई हे।

कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई, हर का जाप जप हो जप जपने, जीत आव हो बस हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई हे, खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई हे, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले,

बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग मह सोभ सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीसै, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै, तिस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता।

सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैजर खाई है, मारू सोले महल्ला पंजवा।

ऐसा वणिज करहो ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है पिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हों बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हों रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेखे बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरे, हमयो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सबसे जंत लोए, टूट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाके है सिद्ध साधक बनवासी, जाके है जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंग अपारा, किन मह थापयो थापन हारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओ गुर कै शब्द सदा रंग माने।

जिस चीते आवे है तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया बनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे, गुर दूर किया परमी जाहे। पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माहे समाणी। चढ़े सवाया नित नित रंगा, कटे नाही तोली जाहे। बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

में अपारना। तुद बिन दूजे किस सलाही, एको एक जपी मन माही। हुक्म बूझ जन पए निहाला, एह भगतां की कालना। गुर उपदेश जपिए मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा। गुर उपदेश टुटै सब बंधन, एहो भरम मोह पर जालना। जह राखै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पल माना। बिनसे बैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। डर चूके बिनसे अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी। आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ इस कालना। ऐसा कोवड भागी आया, आठ पहर जिन खसम ते आया। तिस जन कै संग तरे सब कोई, सो परवार सधारना। एह बख्शीस खसम ते पावा, आठ पैर कर जोड़ ते आवा। नाम जपी नाम सहज समावा, नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा, सूरत देखना भूल गवारा। मिथन महाराज।

तरड़ाए औखद सच नाम रिद गायण। जिस नामे को तरसह बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पायणा। होर द्वारा कोई ना सूजै, त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस, एह रतन तिसै ते पायणा। जाकी धूर करे पोनीता, सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सत गुर परमेश्वर, जिस भेट तपार परायणा। पार जात लोड़ है मन प्यारे, काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे, नाम कमाए रसायणा। गुर कै शब्द मरह पंच धातु, भय पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेटै गुरपूरा, ता पारस परस दखायणा। कई बैकुंठ नाही लवै लागे, मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाईऐ, हौ बल बल गुर दरसायणा। गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक, जिस वड भाग मथायणा। गुर की महिमा वेद न जाण है, तुश मात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लायणा। जाकी सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए, किस जम कै पंथ ना पायणा। संतन की सरनाई पड़िया, जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई, तुम करो दया किरमायणा। निर्गुण को संग लेहो रलाए, कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्खा फिरो पीसो संत आगे, चरण धोए सुख पायणा। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो, एहो नाम दान देवायणा। भये कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायणा। मारू सोलहे महला पंजवां।

सिमरह सगले हर जना, सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरह देवते कोड़ ते तीसा, सिमरह जाक दैत सब सिमरह, अगंत न जाई जस गना, सिमरह पास पंखी सब कूता, सिमरह बन पर्वत अवतूता, लता बली साख सब सिमरह, रव रहे आस्वामी सब मना, सिमरह थूल सूखम सब जनता, सिमरह सिद्ध साधक हर मनता, गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे, सगल पवन का प्रभ तना, सिमरह नर नारी आश्रमा, सिमरह जात जोत सब वर्णा, सिमरह गुणी चतुर सब बेते, सिमरह रैणी अर दिना, सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा, सिमरह काल अकाल सोच सोचा, सिमरह सौन शास्त्र संजोगा, अलख न लखिए एक खिना, कर्ण कराम नहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, कर कृपा जिस भगती लाव हो, जन्म पदार्थ सो जिना, जान कै मन बूठा प्रभ अपना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुरना जो नी परमुरुना, गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द प्रमता का भागै, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सो पूर कर्मा नाशिना, जल फल महियल स्वामी सोई, अवरमा कहिए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला, अवरना दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ तां के पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक से ही जने उत्तम, जो भाव है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना, हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांच जा चंगना, मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिट है हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना, श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सो कृत नाही संगना, रसना गुण गावै हर तेरे, मिट है कमाते अब गुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पांच दूत तज तंगना, चरण कमल जप बोहित चरियै, संत संग मिल सागर तरियै, अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जोन ना नंगना, दास दासन को करले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला, सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना, मन तन अर्प धरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हौ मैं हंतना, जल फल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या अशल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना, जत कत पेखो प्रभ सुख सागर, हर कोट भंडार नाही रतनागर, अगह अगाह किस मित नहीं पाई है, सो बूझै जिस किरपंगना,
छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद मादे अंत प्रभ रव्या कृष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुमह करायो सरल सहाई संत है तना जाचक जाच तुमह अराध पतत पावन पूर्ण प्रभ साधे एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठे रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले महला पंजवा।

चरावे बाना, आप उपावे है आप खपावे है, तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा। एक जी ही गुण कमन बखाने, सहस फनी सेख अंत न जाने। नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया, तै भयानक जमदूत दुतर है माया। हो कृपाल इच्छा कर राखो, साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले मह मौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना दिल दरे आओ तो वो मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाए कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भो नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु प्रकारी पालका तिसह प्राप्त हुए निधाना राम नाम रस अंतर माना कर गहली ने अंध कूपते विरले के साल का
आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई, ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का, उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोहर वाला, बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का, संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली, सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का, जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाले पूर्ण थाल का, तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे, आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का, रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही,

मेरा गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा हौ बलिहारी सतगुर पूरे जिन खंडिया परम अनाल का सास सास प्रभ बिसरै नाही आठ पहर हर हर कौ त्याई नानक संत तेरे रंग राती तू समरथ बडाल का मारू महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चरण कमल हृदय नित तारी गुरपूरा खिन खिन नमचकारी तन मन अर्प धरी सब आगे जग मह नाम सुहावना सो ठाकर क्यों मनो वसारी जियो पिंड दे साज सवारी सास ग्रास संभाले करता कीता अपना पावना जाते बिरथा को नाही आठ पहर हर रख मन माही साध संग पाजे चुत स्वामी दरगाह शोभा पावना चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नाम निधान सहज सुख नौ निद

जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस

कह मेरे हाथ हमारे कछु है नाही जिस जनाई है किसे जनावना जा कै मस्तक तुर लिख पाया किस ही पुरख ना व्यापे माया नानक दा सदा सरनाई दूसर लवे ना लावना आग्या दुख सुख सब कीने अमृत नाम बिरले ही कीने ताकी कीमत कहन ना जाई जात कत ओही समावना सोई भगत सोई वडदाता सोई पूर्ण पुरख बधाता बाल सहाय सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं बध कट है ना कटाए सोई होए जे करते पावे कह कह आप मनावना अंध कूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे करे अपने मिल साधु गोविंद त्यावना।

पहला विण गाहक गुण वेती है तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहि समाए मोल अमोल ना पाई है बन जना लीजै हाथ नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो।

केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूर्खा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे

सहज वनस्पत फुल फल भंवर वसै पह खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेऊ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देऊ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोई किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे।

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव ना पार। पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोय। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेट सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हर दासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुख चार। नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए। झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नदर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती। दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। खिन मह मार पछाड़सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुद लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी। दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो। लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम। पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम। एक आपे परम पलायन तिन ने फल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम। इकनी सुन कै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै। एक पद रहीद अत डापन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल बेद से बाजणु कणु तड़िए जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए। वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा।
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे ओ पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मन मुख वपार सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यों तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाए दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाएनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी हुए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम भलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभ आई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लखी सुख वस्या मन आई जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय। मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय। सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय। सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोई खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हम मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भय से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाऊ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाऊ अमृत का रस आया
मन वसिया नाहू। सलोक महला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू हो है हौ नाही। बूझो ज्ञानी बूझना, ए अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत् न पाईए, अलख वसै सब माहे। सतगुर मिलै ता जानिए, जा शब्द वसै मन माहे। आप गया भ्रम पहो गया, जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाईए, उत्तम मत तराहे। नानक सोहं हंसा जप जप हो, त्रे भवन तिसै समाहे। महला तीजा। मन माणक जिन

ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਭੋਜਨ ਬਿਕਮ ਸੰਸਾਰ ਪੌੜੀ ਮਨਮੁਖੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਲਨੀ ਮੁੱਠੇ ਅਹਮਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਵ ਥੱਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿਖ ਤੱਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਨਾ ਸੋਧਨੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੁੱਤੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੱਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਗਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸ ਕਿਸੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੋਏ ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਥੋਕ ਵਸਾਰ ਇੱਕੋ ਮਿਤ ਕਰ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਹੈ ਹਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕੈ ਜਨਮ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੋਗ ਨਾ ਮੋਹੇ ਜਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਮਹਿ ਸਾਂਝ ਧਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦੰਮਾ ਦੰਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਅੰਧ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਟੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਪੌੜੀ ਭਾਣੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਯੁਨ ਭਾਣੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਓਨ ਭਾਣੈ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ ਸੱਚ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵਣਾ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜੱਚਾ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਏਂਦਾ ਤਿਵਹੀ ਕੋ ਨੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਚਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੀਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੁੜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰ ਪ੍ਰੀ ਨਾ ਦੇਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ ਪੱਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਵ ਰਸ ਛਾਰ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਤੋ ਥਾਟ ਸਿਰਜ ਸੰਸਾਰਿਆ ਹਰ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਨਵਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਜ ਹਰ ਰੰਗ ਸਵਾਰਿਆ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਅੰਤਰ ਕਲ ਧਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਿਆ
तू जान है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तो मोहया कद पसी जानी तोहे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवे है आप दयाल तिस लावे है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत दिखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवे है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामू पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ही साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूश पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यो आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवा पोरे पोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा
तू पुरख अनंदी अनंत सब ज्योत समाहरा, तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा, क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा, जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा, दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया, गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे, महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरियाण मौजूद, बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद, महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया राज राज से खाहे, पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया, एक मंदर पंच चोर है नित कर है बुरियाइया, दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया, एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया, हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया, शिव अगे सकति हारिया केवै हर पाइया, एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया, जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया, दखणे महला पंजवा अगाह कूतरांग पिछा फेर ना मुहडड़ा, नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा, महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित, हबे जानने अपना कहीं ना ठाहे चित, महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया, सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया, पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा, एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा, लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा, आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा, दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी, फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन प्रापिया, महला पंजवा दुखिया दर्द घणी वेदन जाने तू तनी, जाना लख पवे इरी दखंदो ता जीव सा, महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया, से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया, पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै, जो नर उसकी सरनी परै तिस कंबह पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै, जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै, ऐसी शोभा जने की जे वड़ा हर प्रतापै, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी

मार निवाड़ा गुर पौजले पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवां जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवां कपड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवां क्या तक है व्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दीवान अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाऊ सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा मूथ आऊ सेज नैना पिरी विछावना जे देखै एक वार ता सुख कीमा हूं वाहे पौड़ी मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाईया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाईया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाईया मन अर्प्य हो हौ मैं तजो इत पंत जलाईया नित सेवे हो साहिब अपना सतसंग मलाईया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाईया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाईया दखणे महला पंजवां मूथ आऊं तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई एक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणे पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थीऐ कार कूड़ा वी छड संभल सच धणी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी
बाहर भेख ना पाईए प्रभ अंतर जामी एक सहार जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ दामी चल दिया नाल ना चल खिन जाए बिलामी विचर दे फिर संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोहे नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तै तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथा पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाईऐ बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदर हो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जन्म जय कट बुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई।

आई कहे कबीर रामै राम छूटो हो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौ लो मनहु ना तजह बेकार जेहे घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाई है रामा रंग रवहो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान ज्ञान अंजन जेहे पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहु ना जाए रिद सिद जा को फुरी।

प्रसाद अनपहो किनै ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपहो होए बना हम्बै सहो हदूर देखै ता पहो पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझै ता निरपो होए बना हम्बै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक बना हम्बै तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी।

मूर्ख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया, अचल चल थपिया, अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिंह।

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै,

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूजै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर्ख

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया तावत पंच रही।

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

होई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया असमै पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी पुल पुल पछो ताणी सुन लाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज कर वसे अड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कही है क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

साची सच मत तेरी, साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी, मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिला प्यारी, मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा, क्यों पाई है पिर पारी, सतगुर शब्दी मिले विछुनी, तन मन आगे राखे, नानक अमृत बिरख महारस फलिया, मिल प्रीतम रस चाखे, महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे, अन दिन रतड़िए सहज मलीजे, सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे, गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई, मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा, मटकी फोड़ न

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा तारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव है चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे तिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पा

राम गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे।

गुर शब्द सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुरु नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए,

अनेक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग है सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाए काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास वसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावह जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेहो अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप भौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरियात ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

ब्रह्म हो रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुतह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

रचियो बावर ध्रम छाया रंग रात मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बाछत मिले।

आउ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना।

साधु विवर्जत तजुहु मान अबमाना लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवाना तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जत हर पद चीनै सोई रहाओ राजगुण तम गुण सत गुण कही है यह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया तीर्थ वर्त नेम सुच संयम सदा रह निहकामा तृष्णा यर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा जिहे मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो हो बन

या निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के भार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटे दसवां दर खूले ता मन खीवा पाई

खान भाउ भगत सिंह काज न कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान रहाओ लालच झूठ बिकार महामद एहे बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लै जाए रहाओ गहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कटंब मेल हंस अकेला जाए वैस

बित वैपुर पाटन बहुर न देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल सम।

पद है अमरेऊ राम भगत बसेख रहाउ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी

रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कभू ना छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हों ममता कठन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी बहरे करन अकल पई होशी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंध ना सूझिया रह उदास आस नरासा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी भैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री धुंद करन पए बहरे मनमुख नाम ना

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरों महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी, रहाउ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधै सिर धंधा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावै गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, भैरों महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै, आप मार अपने

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ चारे वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहु विध भांडे घड़े कुमारा पंच तत् मिल देही का अकारा घट वद को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरो महला तीजा जोगी गृही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत

दुबदा मारी दुबदा मार ब्रह्म बिचारी इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निद पाई रहाओ मूल मोह कर करते जगत अपाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराना मन कै विचार हुक्म बुझ समाना कर्म होवै गुर कृपा करै एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाओ सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी कहत

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरै ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावह गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिष्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी हर का नाम ना पाया रहाउ। गुर का शब्द सब रोग गवाए जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिले वडियाई जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटे तां फल पाए सच करनी सुख सार। से जन निर्मल जो हर लागे हर नामे तरह प्यार। तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है जिन्नी राम नाम चित लाया। भैरों महला तीजा शब्द बीचारी सोजन साचा। जिनकै हिरदय साचा सोई साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजै भाए खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

मूर्त मलाय। सो प्रभ साचा सब ही साचा, साचा सब अकारा। नानक सतगुर सोजी पाई, सच नाम निस्तारा। भैरव महला तीजा, कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता। सतयुग परमहंस विचारी, द्वापर त्रेतै मानस वरतै। विरलै हो मैं मारी, कल मह राम नाम बड़े आई।

फेर चलै तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर कृपा मेलो सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सच्ची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर पिता।

जाप। हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाऊ, जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई, जिस कौ तुम हर राखिया पावे तिसकै नेड़ै कोई ना जावे, तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर, भैरों महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार, मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार, मधसूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु, गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावहु अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे, ओहो पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरों महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्स देख मन बिगसै, खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ, तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया बनवारी, तिनकी सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी, ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी, हर आप बलावे आपे बोलै, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी, हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी, भैरों महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन भीना, तिन हम श्रेवह नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गनने रहाउ, गुरसिक हर बोलो हर गावहु, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख कने, तन सो वंश तन सो पिता, तन सो माता जिन जन जने, जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने, हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरनी, नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवनी।

मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग पेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अष्टी सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरु महला पंजवां निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकटे अभेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरब हिरै मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साकै कोए। पहरों महला पंजवा, तौ कड़िया जे हुए बाहर, तौ कड़िया जे विसरै नरहर, तौ कड़िया जे दूजा पहाय, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने, तौ कड़िया जे पूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा, द्वितीया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवां।

बिरथि सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हों त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

मुन्ना दृष्ट रोग पच मोए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु बासन रोग भवर बिनसानु।

फिर फिर जोनी भरम रोग बंद रहन रती ना पावे बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहा पकड़ रोगों काड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया भैरों महला पंजवां चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणे चीत आवे ता चूकी काणे चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवां बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी नीत हमारे सदा अविनाशी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अन्ते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवां, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदनी आया। खसम तू है सबना के राया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भय दयाला। नानक दास देख भय निहाला, भैरो महला पंजवां। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। रहाउ सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेविया तिस भौ ना व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

जात है अमृत नाम शीतल मन गह अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूरन हारी खिन मैं ऊणे सुपर भरिया खिन मह सूके कीने हरिया खिन मह नथावे को दीनो थान खिन मह नमाणे को दीनो मान सब मह एक रहिया पर पूरा सो जा पै जिस सतगुर पूरा।

मोहे दुहागने आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जा को प्रगट भये गोपाल ताकै दर्शन सदा निहाल सर्ब गुणा ताकै बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना।

पियावे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर परे, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावी थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा सार, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभ दात, तुमरी उस्तत करो दिन रात, रहाओ हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दतारा, तौ प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर।

सुख होए, कर कृपा जा को मिले सोए, रहाओ जाके कर्तव लखे ना जाहे, जाका परवासा सब घट माए, प्रगट भया साधु कै संग, भगत अराध अन दिन रंग, देंदे तोट नहीं पंडार, खिद मह थाप्यो था।

की आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

अणहुंदा पार निंदक सिर धरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजे पैर आद पुरख निंदक पोलाया

मारे तृप्त सुभोग नाम हमारे सगल अचार नाम हमारे निर्मल व्यवहार जाके मन वसिया प्रभ एक सगल जना की हर हर टेक मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगती लावो, नमाने को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसे, जाने अपने कह हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान, तत ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरो महला पंजवां, संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै।

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हौ मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर बिसराम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरि, साध जना कै संग निस्तरि, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

बहुतै धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संग पाइय वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ, बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हो करता, बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावै निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवन हार, गुण निदान बेअंत अपार, जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेटत मन भया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

सोवै हर सिमरन शाद परम गत चाहै मूल बिना साखा कत आहै गुरु गोविंद मेरे मन त्याहे जन

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवां, गुर सो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महापरेत, आठ पहर हर हर जप जाप, राखन हार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे, मानस की कहो के तक बात, जम ते राख दे कर हाथ,

नानक पाया नाम निदान पैरों महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भजन अवनासी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत देखो तेरी सरना बल बल जाई सत

रोग सब किस तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुरे अगम अपार निर्मल सोभा आचर्य बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गाव

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

न बदै, हर सिमरन गर्भ जोन न रुदै, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माही अकेला, जात अजात जपै जान कोई, जो जापै तिसकी गत होए।

आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन

जन धन भैरों महला पंजवां भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वसया मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राख हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

साची दरगह साकत मूठ रहाओ, सोई कुचील कुदरत नहीं जाने, लीपे थाए ना सोच हर मान।

पिंड तन तिस की रास सोई मेरा स्वामी करनै हार कोट बार जाई बलिहार साधु तूर पनीत करी मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाऊ जाकै ग्रह मह सगल निदान जाकी सेवा पाई है मान सगल मनोरथ पूरन हार जी प्राण भगतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीव है।

सतगुरु अपने सुनी अरदास कार जे आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिस की सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका

अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दायाया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हम कबहू न छोड़ो हर का नाम रहाव। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, लै पाती पांदे कह आया, नाम बिना न पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवित ना पढ़ो रही समझाए,

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सबे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठ

जो तुर लिखिया सो आए पहुता जन स्यो वाद रचाया। पिता प्रहलाद स्यो गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दाता।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटा।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

कीरत हर साची बहुर बहुर पिस संग मन राची रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही इहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हमको गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

ये हाथी लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर किस गुण बिचार, चले जुआरी दोए हाथ चार।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग

जाना, जो हो बोरा तो राम तूरा, लोग मर्म कह जाने मोरा रहाऊ, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन।

पज हर की सेव भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई

हरि आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

जाति साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खेला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

पार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सतर सै सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस

सदा पिखारी, द्यों जवाब हुए बजगारी। दास कबीर तेरी पनाह समाना, पिसत नजीक राख रहमाना।

प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक है चोट सजाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दुए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकरियो गढ़ को राजा भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अबनासी गंगा गुसाइन गहर गंभीर जंजीर।

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रय स्थान तीन त्रय खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

मन अस फिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उच्चरे।

फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी कर श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा कर, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लाख

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो शिंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना पजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करो कह ता लेकर ऊपर धरो।

भरे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की कट लागी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह।

देवता मिले मरार, जो गुर देवता उतरे पार, जो गुर देवता वैकुंठ तरे, जो गुर देवता जीवत मरे, सत सत सत सत सत गुरुदेव, झूठ झूठ झूठ झूठ।

गुरुदेव ता अठ सठ नहाया, जो गुरुदेव तन चक्कर लगाया, जो गुरुदेव ता द्वादश सेवा, जो गुरुदेव सबै बेख मेवा, जो गुरुदेव ता संसार टूटै, जो गुरुदेव ता जम के छूटै, जो गुरुदेव ता भोजन तरै, जो गुरुदेव ता जन्म ना मरै, जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह भार।

कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाओ सो मुन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई मन का सुभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाई ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मथै सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाउ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पै आला चमर पोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन कोट

काजी मुल्ला हुवे सेख जोगी जंगम भगवे पेख को गिरही कर्मा की संद बिन बूजे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सिरकार करनी ऊपर हो वगसार हुक्म करह मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार क्या कमावे जोग मन निर्मल नहीं दसवे द्वार प्रम प्रम आवे मूड़ा वारो वार एक त्याग हो मूड मना पार उतर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़े पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनके रमैया नेड़ नाहे जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

अपरंपरे अगमय गोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठै पाई हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावह बिरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उधर है।

ओ मती हिन बिद पावो प्राणपति रहाउ पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही पीतर

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै हरे मन चेत हरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए पल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई

लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक और हर अमृत धारी बसंत।

हर मन माही मर मर जम्मह पी मर जाहि से जन जीवे जिन हर मन माही साच सुमालह साच सुमाहि रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल नात माए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत स्यों घर जाए नानक नाम वडाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोई दूजै लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत।

सोए, नाम रता जन प्रगट होए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन साच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, पगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई, पूरे

मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक संजान हर रस चाखै तां शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए बसंत महला तीजा नाम रते कुला का करह उदार साची बाणी नाम प्यार मनमुख भूले काहे आए नामो भूले जन्म गवाए जीवत मरे मर मरन सुवारे गुरु कै शब्द साच उर धारे रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा मन निर्मल सद

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अपुल सच्चा सच सोए, होर

पानी, हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी, सत संगत मिल बुद्ध लानी, हर नामे हम प्रीत लगानी, हम हर विटो घुम वानी, जन के पूर मनोरथ हर प्रभ, हर नाम देव हो हर लानी, जन नानक मन तन आनंद भया है, गुरमंत्र दियो हर भाई।

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण गाई जन नानक हर हर हर त्याई बसंत।

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के भगत को नाही पै जा के भगत को सदा जय कौन उपमा तेरी कही जाए सुखद।

पीर कैसे उदाहरण गुरह पीर तुम दाते प्रभ देन हार निमक निमक तिस नम शिकार रहाउ जिसे परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पये मुकत भगत अरादह जोग जुगत नेतर संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन अगानार रसह स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान बसंत महला पंजवा तुम बड दाते दे रहे जी प्राण मह रव रहे दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान हौ

जात ज्ञान, सर्ब ध्यान मह एक ध्यान, हर कीर्तन मह उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस अरादे

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लग

खसम ते आई एक मन एक पहाय गुरपुरे की सदा सरनाई साचे साहेब रखिया कंठ लाई रहाउ अपने जन प्रव आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताय किरत ओना का मिटस नाहे वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुर मिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन पीते नित रात हो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे।

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभु आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवां घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाई इन बिद

धर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेलै आपे देखै हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल।

बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ के होवै एहे बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कल मह सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवां साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाउ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवां पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर संन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

काकू मन केर बरखस बाणी बुद्ध बदाहेर मातर बूंद ते धर चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर नाम रतो चाहो तुझे ओर नाम दराए चले सो चोर पत खोई बेक।

सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग खीला बिगसै तेतो सोग प्रभु शरणागत की नस होग कापड़ पहरस।

गाछुह पुत्री राज कुवार, नाम भणहु सच दूत सुवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुभद लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बिचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यो फासस काम हार, कड़बन

सब दुख सखाई गुण है बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हर रस राते पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, तर धारण देखे जाने आप, आप भलाए किस कहो जाए, गुरमेले बिरथा कहो माए, अवगुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सतगुर मिले है मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कदै धोए, सदा मुक्त बांध ना सकै कोई, सदा नाम वखाणै और ना कोई, मन

तारा, दुख घणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करतार गुर

0: परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पति जय करण हारा
1: नानक भूले गुर समझावे
0: एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पवरा फूल।

आपे बशरू गऊ खीर, आपे मंदर थम शरीर, आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर देख करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चहो हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी

कार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करहंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर न रहाई अनक उपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंच

खीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल अपने घर लूकी लाई जन को जन मिल सुबा पावे गुण मह गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यों जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मन उदय

भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा। अनक जन्म भ्रमे जो न माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज। पाप करम तव नह संगाई, बिख का माता आवै जाई। हौ हौ करत बदे बेकार, मोह लोभ डूबो संसार। काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन

अपार कर कृपा लड़ ले हो लाई नानक दास प्रभ की शरणाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रह कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

सिमरत मौली स्यों कतेब शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग त्यान सन्यासी माते अहम मेव तपसी माते तप कै पेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ जागै सुख देव अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे न मा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतमक लाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गऊ लवेरी पैंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पढ़न साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यों नहीं काम रहाओ संडै मर कै कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सतावो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाई तुझ राखनहारु मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार उए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नर सिंह पेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बेगूतो मैं को आहे माधो दारण दुख सहयो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभ कमल जाने ब्रह्माद कब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर।

जन्म मरण दुख आस तीर सुख सागर गुण रौ कबीर नायक एक बनजारे पांच बरद पचीसक संग काच नौ बहिया दस गुण आहे कसन बहतर लागी ताहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज रहाउ सात सूत मिल बनज कीन कर्म पावनी संग लीन तीन जगाती करत रार चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हैरानी बनज टूट डह दिस टांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता भरम पाज बसंत हिंडोल कर दूजा।

जूठ उतर सनाई ब्रह्म अग्न के लूठे अग्न पी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया जूठी करसी परोसन लागा जूठे ही बैठ खाया गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा रामानंद जी।

कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े, गंगा गया गोदावरी संसार के काम नारायण सो प्रसन्न होए ता।

साध न फीकी रस बिन, बिन प्रभ काल संता पै रहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम, तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया, जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै, कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम, घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी, फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती, दुर्मत दुख समानिया। आए न जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली, प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया, हर पाए प्राण अधारा रहाउ। इन विद हर मिलिया वर कामन, तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका, गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको, हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी, गुरमुख रंग सुवारे। जारो ऐसी प्रीत कटंब सलबंदी, माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही, दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को, दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम धूर, मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिलै शांत पाईऐ, किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डै भाग सत संगत पाई, हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सत तीरथ मज्जन किया, सत संगत पग नाए धूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी, हिरदा कसुद्ध लागा मोह कूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईऐ, हों मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल किरपा कर हर जी, मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिलै हर पाईऐ, जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा, गोबिंद चरणन कौ बलिहारी। भवजल जगत न जाई तरना, जप हर हर पार उतारी रहाउ। हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी, सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हृदय।

तारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तार साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबहू बूझ जुह बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कै शब्द सवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया उइ पावह मूख दुआरी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाद लगाई। हृदय कपट नित कपट कमावह मुख हो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर चालाई। नानक नाम

लगाई मन हर हर कथा सुखानी रहाव दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआं पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिन सद सद सदा हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाउ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

सब सृष्टि का प्रभु मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ। हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि तिनका सब दुख भरम पहु जासी। जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी। सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम। बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ। राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे। जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय। सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संत हो। जो भगत जना की पात राखे बिच कल युग अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन।

तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों बूसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते

करह सब वर्ता यो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान। साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारंग महला पंजवा अब मोरो नाचनो रहो लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहू रहाओ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी प्रिय बचन उपहास कहो जो सुरजन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यों कनको कुठारी चढ़ो कबरो होत फिरो जब ते शुद्ध पय है बारह तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो मूर्त करी पलो बजाव नहारो ऊठ सधारियो तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो तब ओह भिन्न दृष्टो कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा लैनो नाम अमृत रस नीको।

सब मन तने अर्पण शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरू देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खागियो दृष्ट पई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखियतर बनासी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेहत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवां मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरै ठाकुर प्यारु तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत कृपानंद नानक पूर रहयो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवां अब मोहे राम भरोसो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवह तराए रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

आई सारंग महला पंजवा ओए सुख का स्यो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादि पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन अपाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारै रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरयो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर भार है निर्वैर संग वैर रचाई पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवां अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाऊ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजे नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो पराप।

अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याई रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांछ नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रहचिरिया रहाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसर स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवां अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सार महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाउ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्बांगै गुर नानक प्रभ पाहे पठायो मिलो सखा गल लागै सारं महला पंजवां अब मोरो ठाकर स्यों मन माना।

ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना। तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना। पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना। सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा। विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ। हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा। निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी। रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी। जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी। उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ। बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता। बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभु कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा। सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यो जल मीना। रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रवीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है। सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार है। रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारग महला पंजवां अब मोहे धन पायो हर नामा पए अचिंत त्रिशन सब बुझी है। इहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत।

के दुख सहमा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं भोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम का।

सुवार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जीता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बस्यो मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेट्यो सुख सहजे आनंद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज में पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सत्संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

गासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्व थान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा सत संगत कीरेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियर बसेओ सगल

दास बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सो।

फूल फूल बेख खाई रहाउ। प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई। मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई। सगल निदान करै मह पाए, कहो नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया। जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाउ। हम भूले हैं तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहा गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा अनदाई व्रत पाल बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आसना अवर काहू की कीजै सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरनी पाईए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाईए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताइए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ

पुरखा किन्हीं बाप महतारी सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्ज्यो आन जंजारी रहाव देव सचार के दिसह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी कर्ण करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाव खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्र बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारंग महला पंजवा।

सेवक की आपकी ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाईए वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो।

समाए आनंद आनंद गुण गाया बाहां पकर कड लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद प्राण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तो फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चर हो प्रभु को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मन हो साचा एह सो आओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यो लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपयाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास पेख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साद अमृत रस कीर्तन हर गाई है अहनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाई है मिट जाहे सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाई है घर लै आवलाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जात वर्ण ना साखो नानक महिमा एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

सच तन वन जोहू सच तन संचोहू कबहू ना आवहु हारे खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे भंडारे कहो नानक सोभा संग जावहो पार ब्रह्म कै द्वारे। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा कमन मूल ते मनुख करिया एहो परता।

एक नाम कलमल दग्ध होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाव आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंच करै ना जानै लाभ है सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातरक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा किरपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी रहाओ हर के नाम स्यो प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी तू तत बार न लागै ताको ज्यो गागर जल खोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन्यान न होरी सारंग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाओ बिन हर भजन जेते काम करिये है तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐ लाहे चरण कमल नानक मन बेदेहो चरण है संग समाहे सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आग्या कुशल पाशै खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरे गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरे गुरु मलाया कर कृपा राख।

को बल होए सगल मनोरथ पूर्णता हुके दुख ना व्यापै कोई रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारू महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तो

तेरी सरलाई ज्यो भावै तिवै चलाई सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल भी सह शार रहाव ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उदार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिठिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे चोट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कभू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवां तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत परति हार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे।

चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवा। रे पापी तैं कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत संवंत सुखिया नाम सिमरत खीन गर्भ उदर बिललाट करता तहा होवत दीन महामाद विकार बहंदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कवन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा। माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात न कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध है कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा। माई री मन मेरो मतवारो पेख दयाल अनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खमारु रहाओ निर्मल पय उजल जस गावत बहोर ना होत कारु चरण कमल सिओ डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारु कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारु नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारु सारी महला पंजवा। माई री आन सिमर मर जाहि त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहि रहाओ नाम बसार चलह अन मार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत नायावे गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग दीतेओ बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा। हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरी है काडे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीते आ बहुर ना जुए हार आठ पहर कब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगे दान सारंग महला पंजवा। बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

कर मस्तक धार्यो मेरे माथे साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सब फल पाए रसक राम नाम त्याए अब चल नीम तराई सतगुर कबहू डोलत नाही गुरु नानक जब भये दयारा सर्व सुखा निद पाही सारी महला पंजवा निभे नाम की सच खेप लाभ हर गुण गाए नित तन बिखे माहे अलेप रहाव जी जंत सगल संतोखे अपना प्रभ त्याए रत्न जन्म अपार जीते

मन मोहिउ अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोविंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग भ्रम पै सगले खाद। एक आधार ना

जानो दुतिया भाव सब लूहु रहा त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिख्या के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हूं मैं हू राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाओ ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हिरदय तार गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार जल थल महियल पूर रहियो सर्बनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार सारंग महला पंजवा ताते करन पलाहा करे महा विकार मोह मद मातो सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांचे उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बसे अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी जह दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिख्या मद चाखी रहा कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी संतां बिन तै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तै मोहे बिन संतां किने ना लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारंग महला पंजवा मायरी काटी जम की फास हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ कर कृपाली ने कर अपने उपजी दर्स प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस महाध्यान अटवी ते काडे मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नासे हर नानक रतन लहियो सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर भयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्ब ला जोर नानक सरन कृपा निद सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमन गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राचे है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार तार अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा।
मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसी सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवां त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साक तुम्हें संग।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारण महला पंजवा कर शिवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारन महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संत

हर हरे हर मुखों बोल, हर हरे मन तारे रहाओ। श्रवन सुनन भगत करन, अनक पातक पुनः चरन। शरण परन साधु आन वान बिसारे, हर चरण प्रीत नीत नीत। पाम नाम है महापनीत, सेवक पै दूर करन कलमल दुख जारे। कहत मुक्त सुनत मुक्त, रहत जन्म रहते। राम राम सार पूत, नानक तत बीचारे। सारंग महला पंजवां, नाम भगत मांग।

हर जन के रेन बाछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाही त्रास सिमरे अंतर जामी एक सरन गोबिंद चरण संसार सगल ताप हरन नाव रूप साध संग नानक पार जरामी सारंग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग रहाव दृष्टो कस संग ना जाए।

नह दूर पूर हजूर संगे सुंदर रासाल तू नह बरन बरन नह कुलह कुल नानक प्रभ किरपाल तू सारंग महला पंजवा करत केल बिखै मेल चंदर सूर मोहे उपजता बेकार दुंदर नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाओ करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपताही या यग मह कू रहन न पावे एक आवह एक जाही रहाओ कां को तन धन संपत कां की का स्यों नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवां कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू न हर गुण गायो दिखिया सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाऊ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रबो मन मेरे हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा धुन निश्चल घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पही मन पहाई। सहज समाद सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई। गुर कै शब्द रत्ता बैरागी निज कर ताड़ी लाई।

ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बने आई, नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा, कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा। रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता, प्रेम सदा नौ रंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया, एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी, हर मेल लय बड़ भागी। अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते नेह केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी, साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पौ पंजन अवर न जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदकाई, एक सबिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया, सुपार परे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई, नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई। सारंग महला तीजा अष्टपदिया घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई। हर बिन अवर न जाना कोई, हर कै नाम मुक्त गत पाई। रहाओ शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिव लाई। हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहिया समाई, भगतां का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बढ़ाई। निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई, मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथै कहानी। गुरमत निश्चल हर मन वसिया अमृत साची बानी, मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई। सतगुर मिल रही है सदे अपने जिन हर से ती लिव लाई, मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई। हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई, शब्द विचार सदा रंग राते हों मैं तृष्णा मारी। अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी, सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पानी। दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी, आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी। नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी। सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा, जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा। रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया, हर बिने अवरना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया। प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई, शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई। रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई, राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई। पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके भ्रम भेख थके भेख तारी, गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी। आवा गौण निवार सच राते साच शब्द मन पाया, सतगुर सेव सदा सुख पाईए जिन विचों आप गुआया।
साचै शब्द सहज धुन उपजै, मन साचै लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जगतो वरतै, विरला एक पछाणै, शब्द मरै ता सब किस सूजै, अन दिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूजै, होर कहना कथन ना जाई। नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई। सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कै शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करह भाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नावै सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जग है मैला, दूजे परम पथ खोई। क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ ना पाई, हो दयाल कृपा कर हर जियो, नामो होए सखाई। सच्चा सच दाता कर्म विधाता, जिस भावै तिस नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझै,

मुख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच आधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए है जिनकी पत पावे लिखे सारंग महला पंजवां।

आए पौड़ी गुरमुख चल तरचाय उन गुण प्रगति आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा साह चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइया वस्त सुमाल वस्त लई बन जा रही वखर बद्दा पाए के लाहा लै चले एक चले मूल गवाए थोड़ा किन ना मंगियो किस कही ऐसा बास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतियां के बाप केतियां के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जम दर बद्दे मारी है परम है परमाया मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद इन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाही है करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाही है जिन कीता आकार दाता सो सलाही है जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सिओ कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सत गुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिव लाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा बोलना।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूँ गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापे रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशांते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड़ियाई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूर्ख की गिरही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु भरिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला तर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे मानस देव सब सबे जोग ध्यान सबे पुरियां खंड सब सबे जी जहान।

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दी बान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पवजल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देव सोई श्लोक महला पहला पुरिया खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

थाकिया एवड रखह जोत, नानक चस्यो चुख बिंद उपर आखण दोष पौड़ी। नाए मन्य कुल उधरै सब कटंब सबाया, नाए मन्य संगत उधरै जिन हृदय वसाया। नाए मन्य सुन उधरे जिन रसन रसाया, नाए मन्य दुख भुख गई जिन नाम चित लाया। नानक नाम तिन्नी सलाहया जिन गुरु मलाया। सलोक महला पहला, सबे राती सब देह सब थिति सब वार, सबे रुति महा सब सब धरती सब भार, सबे पानी पौन सब सब अग्नि पाताल, सबे पुरियां खंड सब सब लो लो आकार। हुक्म ना जापी केतड़ा कह ना सकी जयकार, आख है थक है आख आख कर सिकती विचार। तृण ना पायो बपुड़ी नानक कह गवार।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजिक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई अड ना पल्लै पाए। जे आप परख ना आवई तां पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए तां वत लहै नौ नित पल्लै पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू। जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिन की बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै बिकसै मोहि माया। देश परदेश धन चुराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम सुमाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है, जिसह हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहू गुट्ठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए। हर तसै त्याव संत जन हो, जो अंते लए छडाए, हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया, तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी, गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठग मूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेह बा स्वादी लीलत लोह।

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाड़ै धरै, अत संचै समझै नहीं मूड़, धन धरती तन होए गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाऊ मेरी बांदी भगत छुड़ावे।

निफल पई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बे मुखन को

संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यों काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत

देही नानक रुत सहावी साई बिन नामै रुत केही। मलार मोहल्ला पहला करो बिनो गुरे अपने प्रीतम। हर वर आन मलावे सुन कन कोर शीतल मन मोरा। लाल रत्ती गुण गावे बरस कना मेरा मन पीना। अमृत बूंद सुहानी ही अरे गुरमोही मन हर रस लीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया। हर वर नार पई सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सोहाग हरी। सोग बजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निश्चल पूरे गुर की ओट गही। नानक राम नाम जप गुरमुख धन सुहागण सच सही। मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृपते। हम मैं करत गुआया पर धन पर नारी रत निंदा। दिख खाई दुख पाया शब्द चीन भै कपट ना छूटे। मन मुख माया माया अजगर भार लदे अत भारी। मर जन्मे जन्म गवाया मन भावै शब्द सुहाया। प्रम प्रम जोन भेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाउ। तीरत तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया। रतन पदार्थ पर हर त्यागया जात को तत ही आया। बिस्टा कीट पहे उत ही ते उत ही माहे समाया। अधिक स्वाद रोग अधिकाई बिन गुर सहज ना पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बीचारा। खोजी उपजै बादी बिन सह हौ बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार न।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस घना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलिया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाए।

पीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाव। दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनो नदर करे करतार। काया महल मंदर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाई, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला, घर दूजा।

ठहरै सोय। मलार महला पहला दुख वे छोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग।

सब शाम रत परम दै दिसह थाम देहे ना नाउ ना हुए जात उतै देहो एतै सब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निदान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला।

असमान साहिब समर्थ तेरे तान जल थल ढूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर जिन तन साज दिए नाल खंभ हत तृष्णा उडना की डंज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम भलाए कर कर करता आपे वेखै जित पावै तित लाए सेवक को एहा

ब्रह्मा विष्णु महेशा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आविचार।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै।

दुख निवारण शब्दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी दर साचै पत पाई मन रे मन स्यों रहो समाई गुरमुख राम नाम मन भीजै हर सेती लिव लाई रहाउ मेरा प्रभ अति अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई सच संयम करनी हर कीरत हर सेती लिव लाई आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मलाई देही काकी पौन बजाए गुरमुख अमृत पाई आपे साजे सब कारै लाए सो सच रहिया समाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई मलार महला तीजा हम मैं बिख मन मोहया लद्या अजगर पहारी गरड़ो शब्द मुख पाया हम मैं बिख हर मारी मन रे हम मैं मोह दुख पारी एहो भवजल जगत न जाई तरना गुरमुख तार हर तारी रहाऊ त्रै गुण माया मोह पसारा सब वरतै आकारी तुरिया गुण सत संगत पाई नदरी पार उतारी चंदन गंध सुगंध है बहु बासना बहकार हर जन करनी उत्तम है हर कीरत जग विस्थार कृपा कृपा कर ठाकुर मेरे हर हर हर उतार नानक।

नानक कवन बिद करे क्या कोई सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुरु सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हम मैं ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

मन मुख मोहे मुग्ध गुवार अन दिन तंदा करत विहाय मरमर जम्मह मिले सजाय गुरमुख राम नाम लिव लाई कूड़े लालच ना लपटाई जो किछ होवे सहज सुभाय हर रस पीवे रसन रसाई।

मुक्त घर रह गुर शब्दी अस्थिर घर बह मेरे मन काहे रोस करी जै लाहा कलयुग राम नाम है गुरमत अन दिन हृदय रवीजै रहाउ बाबी हा खिन खिन बिल लाए बिन फिर देखे नींद ना पाए इहो विछोड़ा सहया ना जाए सतगुर मिले ता मिले सुपहाय नाम हीन बिन सह दुख पाए तृष्णा जलिया भूख ना जाए बिन भागा नाम ना पाया जाए बहुविध थाका कर्म कमाए त्रै गुण बाणी वेद बीचार बिख्या मैल बिख्या वापार मर जन्म है फिर होए खुआर गुरमुख तुरिया गुण उरतार गुर माने माने सब कोए गुर बचनी मन शीतल होए चहु जुग सोभा निर्मल जन सोए नानक गुरमुख विरला कोए राग मलार महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अन दिन हर हर त्यायो हिरदय मत गुरमत दुख वसारी सब आसा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा तारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुर देख मेरा मन बिगस्यो जन हर भेट्यो बनवारी रहाउ जिन ऐसा नाम वसारिया मेरा हर हर तिसकै कुल लागी गारी हर तिसकै कुल पर सूत ना करियो तिस विधवा कर महतारी हर हर आन मलावो गुर साधु जिस अहनस हर उर तारी गुर डीठै गुर का सिख बिगसै ज्यों बारक देख महतारी धन पिर का एक ही संग वासा विच हौं मैं पीत करारी गुरपूरै हौं मैं पीत तोरी जन नानक मिले बनवारी मलार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती।

तीर्थ याद सठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिला

बसियो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हों तिन कै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिन की तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाउ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़।

अजमल गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुर प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप करे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तौ मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निद नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हिरदै बसहै नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कार्य सगल आरंभियो घर का ठाकुर का परुसा सुनिए बाजै बाज सुहावी।

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूजह, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते। राग

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश भय मन निर्मल गुण गाए रंग रंगी एह मन दे किए संत मीता कृपाल भय बड भागी महा सुख पाया बन्ना साको रेन नानक जन पागी मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मलाई सगल सहेली सुख पर सूती जेहे कर लाल बसाई रहा मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करूं बराबर जो प्रिय संग राती ए हम मैं की तिठाई पई निमाणी सरन एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे।

ओ नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया।

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवां अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदहत भयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन भय सागर हरना

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाऊ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु तहाया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लेव लाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां, बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाउ। जिनको प्यास

अंतर्जामी सब मह वर्तै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

पंजवां प्रभ को भगत बचल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहाओ जय जय कार कीनो सब जग मह दया जीयन मह पायो कंठ लाए अपनो दास राख्यो ताती वाव न लायो अंगीकार कियो मेरे स्वामी प्रम पौ मेट सखायो महानंद करहु दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मलार महला पंजवां चौपदे घर दूजा।

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई गुर उपदेश हर हृदय वस्यु सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाउ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करूं इशनान साची दरगाह पाइय मान गुर बोहिथ भवजल तारनहार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रभ आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकी कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

तुद पानी, नानक तिन कै सद कुरबाणी। मलार महला पंजवां, परमेश्वर होआ दयाल, मेघ वरसै अमृत धार, सगले जी जंत त्रिपतासे, कारज आए पूरे रास्ते, सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपुरे की सेवा पाया, एतै उतै निभै नाल रहाउ, दुख पन्ना पै

राखे सब जंत गुण गाव हो नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जान है प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवां गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहे नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाओ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर।

गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

लाई कलहर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देस नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रयो प्रयो करै सबै है जेती गुर भावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सवार आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बबरे हम मैं गर्भ खपै जागे ऐसा रहाऊ जय जगदीश।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन शिंगार करी तेता तन तापै कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बपड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै भावै दर लहस प्राण। बूढ़ा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा तह मग ना चालन हार। जित घर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग

संसा जाय सतगुर ते हर बुझिऐ गर्भ जोनी नह पाई गुर प्रसादी जीवत मरै मर जीवै शब्द कमाई।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई पुरखै पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चलै मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई करमी पल्लै पाई सतगुर विण किने ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावै जम डंड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाउ। हरे अपने भाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर सिउ लागा प्यार। हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

कमल प्रगास तित कट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिव लाए सद ही नाम वेखह हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

पतत पावन भगत वच्छल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्श प्यास हर जियो आप लेहो सम्हारी हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है भिन्न आन ना जानिए गह पुजा ले वो नाम देव हो तो प्रसादी मानिए भज

सब सुख साचो नाम पौड़ी, आपी न आप साज आप पछाणिया, अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया, बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, किए रात दिनंत चोज वडाणिया, तीर्थ धर्म विचार नावन कुरबाणिया, तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया, सच्चा तख्त निवास।

सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदै लाए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हथ किश नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

शह बरलाय अन तन उपजै बहु घणा कीमत कहन ना जाय नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संबाहे जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आए पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाय दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिले आ जाय आपे जोड़ विछोड़े।

जो हर चरनी रहे लिवलाई। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचोह आप गवाई। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए। तिसै सरे विहो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो वई।

वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नजरी आया, हरि आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिया, बिन तोले पाया ना जाय, गुर कै शब्द विचारिया, गुण मह रह समाय। अपना आप आप तोलसी, आपे मिले मलाय, तिसकी कीमत ना पवै, कहना किशु ना जाय। हौं बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाय। जगत मुस्से अमृत लुटिया, मनमुख बूझ ना पाई, बिन नावे नाल ना चलसी, जासी जन्म गवाय। गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया, दूतां का किसना वसाए। सलोक महला तीजा, बबीहा ना बिललाए, ना तरसाए एहो मन, खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मन्या ते खोतरै, चढ़ै चवगल वन महला।

जल पाई विचों आप गवाई। नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई। पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाउ राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाऊ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई जे सतगुर अगै घालिया ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख विण नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे वहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सकता।

शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुध सेम दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटै दिन काल सिज्जै काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रोवह लियावह फेर बिन बूझे किस सूझै नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही नानक खसमै एवै भावै सेई मोए जिन चेतना आवै महला पहला मुआ प्यार प्रीत मोई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुखदाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

जिस भाणा मन वसाई अपने भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिखिया कदे ही रजे नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर भू

सच पछाणिए, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, भौजल तारन हार शब्द पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

बिन भरम ना कटिया नाम ना लगे प्यार सतगुर ते भौ उपजे पाइए मूख द्वार पै ते सहज पाइए मिल ज्योति ज्योत अपार पै ते पैजल लंघिए गुरमति विचार पै ते निरपो पाइए

पलंग पौकै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावै मोहे गंध महला पहला।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्हीं पाया सब जग गर्भ गुवार तिन सच ना पाया।

पाल पौड़ी सिर सिर हुई न बेड़ हुक्म चलाया तेरे हाथ न बेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन कोई न रख सी जर जरवाणा कन चढ़िया नच सी सतगुर बोहित बेड़ सच्चा रख सी अगन पख है पड़हाड़ अन दिन पख सी फाथा चुगे चोग हुक्मी छुट सी करता करे सो होग कूड़न खुट सी सलोक महला पहला धर्म है कर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशान दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार घोर बाजिंतर तह साच तख्त सुल्तान सुखमन कह घर राग सुन सुन मंडल निवलाय कत कथा बीचारी है मनसा मन है समाय उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु न जाय अजप्पा जाप न विसरे आद जुगाद समाय सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज घर वास शब्द खोज इहो कर लहै नानक ताका दास महला पहला।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया।

तुद फिर दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलाखे गोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

याच भस्मती सुसा राजा त्रिपहुणपति जाच कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वह हेला एते जी जाचै है करी सर्व

तू जो दयाल कृपाल कहियत है हत पुज भयो अपारला। फेर दिया देहरा नामे कौ पंडियन कौ पिछवारला। मलार वाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नागर जना मेरी जात बख्यात चम्वारं। हृदय राम गोविंद गुण सारंग रहाओ। सुश्री सलल कित बारो नीरे संत जन करत नहीं पानं। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आनं। तर तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत बीचारं। भगत पागौत लिखिया तेहि उपरे पूजिया कर नमस्कारं। मेरी जात कुट बांडला ढोर ढो अंता नितह बनारसी आस पासा।

लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है अजहो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनै रवदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते साध संगत पाई।

चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंदप हर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप कीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाऊ।

अध्याय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

पीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी, हम लाए हर सेवा, हर जप जपे, हर जप जपे।

चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जात कर भेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल फले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ है आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगमे अगादो मत गुरमत हर प्रबलादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ दिख माया संच बहु चितै बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भये कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमती सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति।

कुल सगल तराधु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधार कोट पराधी खिन महतार जा को चीत आवे गुर अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादों तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोबिंद ते तहल संतन की संग साधु का हर नामा जाप परम

तेरो जन हर जस सुनत उमाहयो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाद समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासह रिद भयंत शांत अमृता रस पियो रसना नान

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी पोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान तरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

समानु मुख बकनो मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केते ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग कहो बेत रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक एकी नेत बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किछ लेत कहो नानक जन हर हर हर है कत आवै कत रमत कानड़ा महला पंजवा हिये को प्रीतम बिसर ना जाए तन मन गलत भये तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकी गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सर

बढ़ाई। भौजन बिखम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, भयो प्राप्त गुर चरनारे। कहो नानक प्रभ भये कृपाला, मगन भये ही रह दरसारे। कानड़ा मोहल्ला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे, थोरे काज बुरो कह फेरो रहाओ। नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ केरो, आगे दृष्टि आवत सब प्रगट, हीहा मोहयो परम अंधेरो। अटकेओ सुत बनता संग माया, देव नहार दा तार बसेरो। कहो नानक एकै पार उसो, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरे गाहियो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मटाहयो, भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाध समाहयो। कौन कह तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो। कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ। सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाई, साध जना मिल हर जस गाई, रहाओ कर कृपा प्रभ हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो। पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ। करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दुख सगल मल हरसन, पावन धामन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन। शरण गही पूर्ण अबनासी, आन अपाव थकत नहीं करसन। कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ। अहं मत अन रत कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार बिदहीनत, माम मत मात कोप जरिया। करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उधर सरन परिया। कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाओ। गोविंद त्याग आन लाग है, अमृतो डार भूम पाग है, दिखै रस स्यो असक्त मूडे, काहे सुख मान। काम क्रोध लोभ व्याप्यो, जन्म ही की खान, पतत पावन शरण आयो, उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा, अवलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ। चरण कमल हृदय धार, उतरिया दुख मंद, राज धन परवार मेरे, सर्ब सो गोविंद। साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ पूजो नाम अराध, गुर सतगुर चरणी लाग, हर पाव हो मन आगाद, जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ। अनक पूजा में बहु विद खोजी, सा पूजा जे हर पवास, माटी की एह पुत्री जोरी, क्या एह कर्म कमास।
प्रभ बाहां पकड़ जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोए ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारन नाम प्रिय तेरै नवनिध नाम निधान हर केरै हर रंग रंग रंग अनुपेरै काहे रे मन मोहे मगनेरै नैनो देख साध दरसेरै।

उत्तर करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्याह मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को नाम।

एक टुलेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर केरे कानला महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाव आस प्यास सफल मूरत उमंग ही ओ तरसना।

कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजाचार करत में लंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ नग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर।

करो, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीत करह तुहारी

जाय पतत पावन बिरद स्वामी उदर ते हर त्याई रहाओ संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख लेहो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारो अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इनस्यो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बेहात।

जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप।

जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकी सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद भई मिलियो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कतहु न जाए करह बसाए गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै चरण नभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्ब समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरे तौ मिलियो जो किरपाई प्रभु दयार किरपार किरपा निध जन नानक संतरे ना

अरबिंद शासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावे गु। राम नाम इक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गु। नाम सुनह नामो मन पावे, नामे ही तृप्तावे गु। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पांत बनावे गु। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गु। माया पटल पटल है भारी, कर घूमन घेर कलावे गु। पाप बकार मनूर सब भारी, दिख दुत्तर तरयो ना जावे गु। भौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावे गु। राम नाम हर पेटी है, हर राम नाम समावे गु। अज्ञान लाए सवालिया,

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम।

मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावै गु सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावै गु हर हर कृपा करहु जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावै गु नानक गुरु गुरु।

लै खर्च चले पत पावै गू, खाए खर्च देवै बहु तेरा, हर दिन दे तोट ना आवै गू। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन गुर

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गु रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गु ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावै गु। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गु ज्यों अमरीक अमरा पद पाई सतगुर मुख बचन त्यावै गु। सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गु दयाल दीन भये है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गु। सतगुर सरन पये से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गु जे को सर समदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गु। हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावै गु। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह हर गल मेल मेल मलावै गु। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचै नाम त्यावै गु। हर हर रूपो होवै हर जन को पूज करावै गु। साकत नर सतगुर नहीं पिया ते बेमुख हर परमावै गु। लोभ लहर सुवान की संगत बिख माया करंग लगावै गु। राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावै गु। नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख।

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाईऐ हर त्याईऐ, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांच है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपालै, जप तप संयम पूरन कालै, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइयै नित त्याइयै, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चालै, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पालै, मंगल चार चोज अनंदा, कर किरपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखागामी।

आपे आप वर्तदा तू आपे करह सो हो गिया सत संगत सत गुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलो गिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोहो गिया। श्लोक मोहल्ला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोई हउमै ममता नास होए दुर्मत कड्डै धोए नानक अन दिन गुण उच्चरै जिनको धुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वर्तदा हर जीवड अवर ना कोई जो हर प्रभ भावै सो थीऐ जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किनै ना पाईया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहया तन मन शीतल होए पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू घट घट हर रंग रंगना सब त्यावह तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाचह सब मंग मंगना।

हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावह मान। जो इच्छा है सो फल पाए सी, गुर शब्दीन लगे ध्यान। किल विख पाप सब कटी है, हम मैं चुके गुमान। गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा धार प्रभु, जन नानक जप हर नाम। महला चौथा, हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन मन वसिया आए। सतगुर के भाणे जो चले, तिन दालद दुख लह जाए। अपने भाणे किने ना पायो, जन वेखो मन पति आए। जन नानक दासन दास है, जो सतगुर लागे पाए पौड़ी। तू थान थनंतर भरपूर है, करते सब तेरी बनत बनावनी। रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहो बहो विद भांत उपावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है, गुरमति तुदै नावनी। जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै, मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो हो राम रमो, श्री राम रमो। जित दालत दुख भुख सब लह जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस। हर अमृत हर उरतार, विच संगत हर प्रभु वरतदा। बुझो हो शब्द विचार, मन हर हर नाम त्याया। विख हूं मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेतेओ। तिन जूए जन्म सब हार, गुर टुठे हर के ताया। हर नामा हर उरतार, जन नानक ते मुख उजले। तित सच्चे दरबार महला चौथा, हर कीरत उत्तम नाम है। विच कल युग करनी सार, मत गुरमत कीरत पाईए। हर नामा अर हुर हार, बड़ भागी जिन हर त्याया। तिन सौंपया हर भंडार, बिन नावे जे कर्म कमावने। नित हों मैं होए खुआर, जल हस्ती माल नवाली है। सिर पी फिर पावे शार, हर मेलो सतगुर दया कर। मन वस्से एकंकार, जिन गुरमुख

आपे वरतै सब जगत किया बणजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सत गुर कै पग पाह सत संगत हर मेल प्रभु।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावह हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जपियो मन कीता। महला चौथा, हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो, भाग वस्या।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता।

जग मोहन जिन जगत अपाए सबो वास कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम कूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघार।

जगदीश्वर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्यागो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर निव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जपो हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह मान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदै नो आराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम सम्हारे। जन नानक मंगै दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण आराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार होए, हाटै जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर।

मरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रव लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साके, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकह प्रभ तुमन थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी,

हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाहीं ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे जो

कल्याण भोपाली महला चौथा एका ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाच है सुख सागर भावनिद तरन हर चिंता मणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तत तत स्यों मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद लव तन मन।

न सर्वन सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाव। एते उत दह दिस रवियो मेर तिन है समान। जात कता तत पेखी है हर पुरख।

वह दुर्गा कोट मदे मुक्त कहूं, कहो नानक नाम रस पाइए, साधु चरण गहूं, कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख बनासन हर

मन तन जापिया भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्ब कार्य सिद्ध भय गाय गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्ब कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अलक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुगद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ कढीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक गटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांच है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जानी उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सतगुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी।